के अंदर बात चल सकती हो, हम उनके जरिए से बात को कन्वे करने की कोशिश करें। लेकिन मैंने बताया पहला हल ये होगा कि हमारा अपना बच्चों के साथ ताल्लुक किस हद तक बना हुआ है जिसमें हम उनको कम्युनिकेट कर सकें। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पाँच मिनट और, ठीक है, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, मुझे, मैं इसीलिए कहता हूँ सवाल छोटे लिखें ताकि हम जल्दी से इसको पढ़ सकें। हाँ, लेकिन मामूलन सवाल छोटे नहीं होते और मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, कहीं से तो मैंने शुरू करना है, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्वेश्चन इस टाइप का है कि हम बच्चे को सही और गलत समझाना चाहते हैं, ये भी समझ में आ रहा है कि सही और गलत उसको भी समझ में आ रहा है, लेकिन सही को करने की ताकत उसके अंदर नहीं है। अच्छा, ये क्यों नहीं है? उसके अंदर अपनी विल पावर डेवलप नहीं हुई है। अच्छा, क्यों डेवलप नहीं हुई है? चूंकि ज़्यादातर बच्चे ख्वाहिशात पे चले, तो जिन लोगों के अंदर ख्वाहिशात का एक फ्लो ज़्यादा होता है उनके अंदर उनकी विल पावर ख़त्म हो जाती है, और विल पावर खत्म होने की वजह से वो चाहते हैं कि सही करें लेकिन कर नहीं सकते। और ये इशू क्या है? ये वही कंट्रोल का इशू है, कंट्रोल नहीं है। अच्छा, इसको अपने अंदर हम कैसे ढूंढ लें? अपने अंदर बिल्कुल अच्छी तरह ढूंढ लें। अभी आगा बहजत का नाम लिया गया, बहुत सारे लोगों को आगा बहजत बहुत पसंद आते होंगे, लेकिन उससे कहो कि भाई थोड़ा सा उठ के नमाज शब पढ़ो। पसंद करता है या नहीं पसंद करता? हाँ, पसंद तो करता है, लेकिन कर पाएगा? हाँ, थोड़ा क्वेश्चन आएगा कैसे कर पाएगा। तो बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर हम अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हमारे बच्चे हमारा कंट्रोल लूज अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। तो पहला तो ये जैसे ही हम अपने बच्चों के अंदर ये देखें कि वो कंट्रोल लूज कर रहे हैं, फौरन अपने आप से पूछें कुछ जगहों पे हम भी अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो अपने आप से पूछिएगा कि किस लेवल पर पहुंचकर हम इतने कन्विंस्ड होते हैं कि जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। ये कैसे होता है हमारे और आपके अंदर? मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी आपको कन्विंस करना चाहूँ, फर्ज करें मैं आपको कन्विंस करना चाहूँ कि आप रोजाना कुरान करीम इतनी सफ़े कम से कम पढ़ लिया करें, तो मैं क्या करूं कि आप इस पे कन्विंस हों कि आप इतना सफ़े कुरान करीम रोजाना पढ़ लिया करें, जबकि मुझे अंदाज़ा है अनऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की वजह से कि हम लोगों की आबादी के 50% लोग भी कुरान करीम रोजाना नहीं पढ़ रहा है। सही है, तो मैं कौन सी ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करूं जिससे आप ये कन्विंस हो जाएं कि आप कुरान करीम पढ़ सकें? जिस दिन आप इसका जवाब दे दें तो उस दिन आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरा बच्चा कैसे कन्विंस होगा। अच्छा, मैं इस सवाल से एक और फायदा उठाते हुए करने की कोशिश करता हूँ, विल पावर कैसे क्रिएट करते हैं? विल पावर कैसे क्रिएट करते हैं? तो मैं आपको एक सादा सी बात कहूँगा, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में भी हैं, छोटे छोटे मुस्तहबात की पाबंदी करके, छोटे छोटे मुस्तहबात की पाबंदी करके। वो कैसे? मेरे पास गिलास ऐसे भी रखा है और मैं इसको ऐसे भी पकड़ सकता हूँ, और फर्ज करें मेरे पास गिलास यहां पे रखा है लेकिन मैं इससे पकड़ के पीना नहीं चाह रहा हूं, मैं इसको यहां पे लाऊंगा ताकि मैं सीधे हाथ से पीऊं। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल इंप्लीमेंट किया या नहीं किया? सही है, छोटे छोटे मुस्तहबात में जब आप कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं तो बड़ी चीजों में कंट्रोल में आपको आसानी मिलती है। तो आप अपने बच्चे के साथ भी यही करें, अपने साथ भी यही करें, बच्चे के साथ भी यही करें कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट करें और कहें इसमें मैं कंट्रोल इंप्लीमेंट करूंगा। अच्छा, कंट्रोल की क्वालिटी ये है कि अगर एक स्फीयर में आप कंट्रोल दिखाते हैं, दूसरी जगह पे कंट्रोल दिखाने में खुद ब खुद आपको मदद मिलती है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, अगर आप इस एक स्फीयर में कंट्रोल लूज करते हैं तो बाकी जगहों पे भी कंट्रोल लूज होना शुरू हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप टीवी देखने में कंट्रोल लूज कर रहे हैं तो इबादत करने में कंट्रोल बाकी रहेगा, वो भी जाएगा। हमारे पास दीन में एक जुमला है, जो पता है कि गलत है वो मत करो। क्यों? ये कंट्रोल लूज करना है, और दीन इस्लाम कंट्रोल को बढ़ाना चाहता है हमारे। तो ये जो आप बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि बच्चे को बाद वक्त पता है कि सही गलत क्या है लेकिन नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह एक्चुअली उसका कंट्रोल ना होना है। और ये कंट्रोल ना होने का फिनोमेना मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया कि इस सोसाइटी का हिस्सा है। इस कंट्रोल को डेवलप करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाइए और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करें ताकि आपका कंट्रोल आए। वो छोटे ऑब्जेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं? जैसे यही बात हुई, पानी सीधे हाथ से पियेंगे। मिसाल के तौर पर जब आप घर में दाखिल होने लगें तो कौन सा पांव रखें? सीधा पांव रखें। बाहर निकलने लगें तो उल्टा पांव रखें। अच्छा,
वॉशरूम में जाने के लिए पहले उल्टा पांव रखें, बाहर निकलते वक्त सीधा पांव रखें। कोई क्या कहिए, क्या बन रहा है यार, कोई भी पांव रख लो, हाँ कोई भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कंट्रोल सिखाने के लिए बहुत अच्छा है।

छोटी छोटी चीजों में कंट्रोल इंप्लीमेंट करें। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा आजकल इस बात के ऊपर एम्फेसिस कर रहा हूं, जब नमाज पढ़ें कोशिश करें उंगलियां आपकी जुड़ी भी रहें हर वक्त। देखिए, आप इतना छोटा सा कंट्रोल इंप्लीमेंट करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि माइंड का कंट्रोल बॉडी के कंट्रोल से कनेक्टेड है। जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल बढ़ाते हैं, खुद ब खुद माइंड के ऊपर कंट्रोल आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नमाज की मुख्तलिफ हालतों को जाके देखें मुस्तहब क्या है, उन हालतों को उसी तरह करने की कोशिश करें, तो आपका बॉडी के ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा, खुद ब खुद माइंड के ऊपर भी कंट्रोल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कंट्रोल लूज मत करें, कंट्रोल लूज मत करें, इससे आप बहुत चीजें मिस कर लेंगे। अगर हम बड़े बच्चों को मना करें कि छोटों को ना मारो, हर वक्त रोकें टोकें, तो वो बच्चा सहम जाता है। अच्छा, तो वो जो अगर उसको मारने की इजाजत दे देंगे तो छोटा वाला सहमा रहेगा भाई, है वो भी तो सहमेगा आखिर, ये क्या हो गया। उसको कैसे समझाएंगे छोटे से प्यार करे और इस बात से बड़े को बुरा भी ना लगे। हाँ, तो उसका बहुत अच्छा आसान रास्ता है, उसका बहुत आसान रास्ता है। मैं एक दफा एक स्कूल में कुछ काम कर रहा था, तो वहां पर प्रिंसिपल के पास जैसे होता है, एक बच्चा लाया गया, जो टीचर एक लेकर आया, इसने किसी बच्चे को मारा है। तो प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, अपने पास बिठाया, कहने लगे देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने कहा नहीं सर। तो कहने लगे कि अगर कोई बच्चा तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने कहा नहीं सर, अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि जब तुमने उसको थप्पड़ मारा होगा तो उसको अच्छा लगा होगा। उसने कहा नहीं सर, ये तो नहीं लगा होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, अब ऐसा है कि अगर तुम किसी और को थप्पड़ मारोगे तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं ये बात उठानी पड़ेगी, और वो मैं हूंगा। जो अगर मुझे रिपोर्ट मिली कि तुमने मारा है तो मैं मारूंगा, और मैं इसलिए मारूंगा ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि ये जब थप्पड़ लगता है तो कितना बुरा लगता है, इस बात को जहन में रखना। अच्छा, वो बेचारे प्रिंसिपल ने ऐसे समझा लिया। मेरे साथ एक और वाक्या हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो मेरी लाइफ में ज़रा मुझसे नज़दीक है, उसने कुछ इस तरह का एक पैटर्न इख्तियार कर लिया कि वो मिसाल के तौर पर बॉडी में बहुत स्ट्रांग था, तो वो दूसरे बच्चों के सामने वो अपनी हरकतें कर लेता था। तो मैंने उसको कहा कि देखो बेटा, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि जो कुछ तुम दूसरों के साथ करोगे ये तुम्हारे साथ होगा, और तुम तो प्लान करके करोगे, जब तुम्हारे ऊपर आएगा तो वो ऐसी जगह पे आएगा जिसका तुम प्लान नहीं कर पाओगे। सही है, तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो? नहीं है पसंद तो ये हरकतें मत करो। तो हम दो रास्ते इस्तेमाल करते हैं, एक दफा हम कहते हैं इस बच्चे से मोहब्बत करो इसलिए इसे मत मारो, एक दफा हम उससे कहते हैं कि इस बच्चे को छोड़ दो, अपने आप से मोहब्बत करो, अपना ख्याल कर लो, चूंकि तुम जो इसके साथ कर रहे हो ना वो तुम्हारे साथ भी होने वाला है। ये अगर हम समझाने में कामयाब हो जाएं तो हमारा अपना बिहेवियर भी सही हो जाएगा। काश हमें यह कानून समझ में आ जाए जो मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि जो हम दूसरों को देंगे वो ही हमें मिलना है, वही हमें मिलना है, और थोड़े से इजाफे के साथ, थोड़े से इजाफे के साथ। तो जितना दूसरों को मोहब्बत देंगे हमें भी मोहब्बत मिलेगी थोड़ा सा इजाफे के साथ, और जितना दूसरों को अजियत देंगे वही अजियत हमें भी मिलेगी और थोड़ा सा इजाफे के साथ। तो अगर आपकी और मेरी जिंदगी में परेशानियां आए, कुछ ऐसी चीजें आए जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आ रही हैं, तो दो चांस हैं। एक चांस तो ये कि वो कानून जो है वो एक्टिव हो गया है, हमने कोई गलती कर दी है और वो कानून एक्टिव हो गया है। एक चांस ये भी है कि खुदा किसी आजमाइश में डाल रहा है, इससे बेहतर दे देगा, ये चांस भी है। दोनों सूरतों में अपने बिहेवियर को जज कर लें कि हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, जो दूसरों को देंगे वो हमें मिल जाएगा। तो बच्चों को हम दो रास्ते समझा सकते हैं। मेरे ख्याल में 5 मिनट खत्म हो गए, मैं आपका मजीद टाइम ना लूं, चूंकि मेरे ख्याल में इनको क्लीन अप करना होगा और इनको हैंड ओवर करना है। बहरहाल, अच्छा ये जो सेमिनार्स या इस टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं, क्या इससे तरबियत के सारे मसाइल हल हो जाते हैं? जाहिर है कि नहीं, इससे तो नहीं होते। तो ये क्यों रखे जाते हैं? ये सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं ताकि आपके और मेरे ये जहन में आए कि भाई ये काम थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स आ जाएं कि ये करना कैसे है। और ये काम जो है वो एक प्रोग्राम से हल होने वाला नहीं है, इस काम के लिए मुसलसल हमें स्ट्रगल करनी होती है, मुसलसल तवज्जो देते रहते हैं, कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक आध टिप, अब मिसाल के तौर पर अब तक इतनी देर में आपको क्या पॉइंट मिलने चाहिए?

कुछ पॉइंट्स तो आपके दिमाग निकाल देंगे, मौलाना जैकेट कैसी पहनी हुई थी, बाल कैसे थे, उसको आप छोड़ दीजिए, आप पॉइंट ये निकालिएगा, नंबर एक आपको खामोशी में सोचना है, नंबर दो आपको कंट्रोल करने की आदत होनी चाहिए, नंबर तीन अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिसाल के तौर पर चौथी बात क्या कहूँ तो मैं मिस ना करूँ, खुदा मुताल के साथ रब्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के चंद पॉइंट्स लेकर आप अपनी जिंदगी में काम करें तो इंशाअल्लाह बात हो सकती है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद।

तरफ से जो है वही हक होता है, वो अगर आपने देखनी हो तो आप तवज्जो फरमाएं। सूरतुल माउन कुरान मजीद के बिल्कुल आखिर आखिर में एक मुख्तसर सी सूरत है, सूरतुल माउन। एक मिसाल दे रहा हूं, कुरान इन मिसालों से भरा पड़ा। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा है या उस पे उसकी हालत पे गौर किया है, उसको शनाख्त किया है आपने जो जजा को झुठलाता है। युकज़्ज़िबु तकज़ीब यानी नहीं मानता, किसको नहीं मानता, बिद्दीन जजा को, कि कोई ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें उसकी अलामतें बताता हूं कि जो मेरे नजदीक कयामत को नहीं मानता, नहीं मानता, झुठलाता है। कौन है उसकी पहली निशानी? फदालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यतीम इसके हाथ लग गया कोई, इसका भाई फौत हो गया या उसके औलाद थी छोटे कम सिन यतीम थे या कोई और रिश्तेदार फौत हो गया मसलन और उसके बच्चे थे, वो इसके हाथ लग गए। ये जो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, धक्का देना यानी बदसलूकी करना, धुतकार के रखना उनको। अगर हम मुआशरे में देखते हैं किसी के हाथ यतीम लगे या यतीम का माल लगे और वो उन पे जुल्म कर रहे हैं, वो खाना काबा के दरवाजा खुलवा के अंदर घुस के भी कहे मैं कयामत को मानता हूं, अल्लाह कह रहा है तू नहीं मानता, तू झुठलाता है। तवज्जो फरमा रहे, क्योंकि मुझे और आपको हुक्म यह दिया गया है कि अगर कोई कहे कि मैं कयामत पर ईमान रखता हूं, तुमने तस्लीम करना है। दिल की हालत अल्लाह जानता है। मदीना में बकसरत लोग ऐसे थे कि जो जिनको कुरान मुनाफिक कहता है, लेकिन उनको मुसलमान कहा जाता था। अगर उनके बारे में कहता है ये मुसलमान है या काफिर है, तो सब गवाही देते थे ये मुसलमान है, लेकिन अल्लाह के कागजों में मुसलमान, अल्लाह के रिकॉर्ड में मुसलमान नहीं है। बस अगर कोई यतीम के साथ बदसलूकी कर रहा है, कुरान मजीद का फैसला क्या है, युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये झुठलाता है। अगर इसे पता होता कि यतीमों के माल के साथ ये रवैया रखने से खुदा मेरी गर्दन तोड़ देगा, कभी भी ना करता। कि इस हरकत की वजह से जो मैं उनके थोड़ा सा माल खा के मैं कुछ अपनी दुनिया बना रहा हूं, इसके बदले खुदा बंदे आलम मुझे लंबी मुद्दतों के लिए जहन्नम में झोंक देगा, कैसे करता, ये झुठलाता है। अगली बात जरा इससे भी ज्यादा उसका दायरा वसी है, क्योंकि हम में से हो सकता है सबका पाला यतीमों के साथ नहीं पड़ता, लेकिन अगली जो बात बता रहा है अल्लाह और कह रहा है जो ये नहीं करता वो कयामत को झुठलाता है, उसमें हम सब शामिल हैं अगर नहीं करते तो। कुरान मजीद इंसान की जिंदगी का रुख मुअय्यन करता है कि तूने ये काम करने हैं, अगर तू ये काम नहीं करता तू आखिरत को नहीं मानता। दूसरी निशानी क्या बताई, वला यहुद्दु अला ताआमिल मिस्कीन, मिस्कीन मैं नाज करता हूं, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। यह लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, यह लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि इसमें वो भी आ गए जो खुद खिला सकते हैं और वो भी आ गए कि जिनके पास अगर खुद नहीं है कम से कम दूसरों को कह सकते हैं, तरगीब दिला सकते हैं। सख्त बात है, आप इस आयत पर अगर अमल किया जाए उससे वजूद में आने वाला मुआशरा देखें कि जहां पर हर मुसलमान को, हर कुरान को मानने वाले को उस पर फर्ज कर दिया गया तुझे मसाकीन की फिक्र होनी चाहिए कि वो भूखे ना रहे,

तुझे फिक्र होनी चाहिए कि मुआशरे के जो महरूम तबका है उनकी महरूमी के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी देता है। और फिर खबरदार करने के लिए अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर तेरी जिंदगी में नहीं है मसाकीन की फिक्र, अगर तू जो तू खुद कर सकता है खुद कर, जो खुद नहीं कर सकता दूसरों को तरगीब दे, यानी पूरा माहौल ऐसा हो उमरा के तबके में मसलन, या सब उमरा जो जो जितना है जिस लेवल पर है दुनिया के एतबार से, ये फिक्र हो सबको कि हमें अपने से कम तर जो मुआशरे के लोग हैं माली एतबार से हमें उनका ख्याल रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो कैसा मुआशरा हो जाएगा। और अल्लाह ताला इसको मामूली जुर्म करार नहीं देता। खुदा क्या फरमा रहा है, तुझे वो बंदा दिखाऊं जो कयामत को नहीं मानता, ये वो है जो मिस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं देता, ये कयामत को नहीं मानता। मसाकीन का ख्याल रखना कुरान मजीद के अहम तरीन मौजूआत में से है। अब बात इस तरफ आ गई है, तवज्जो फरमाए। कयामत के दिन जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती उनसे सवाल करेंगे, सूरतुल मुद्दस्सिर में ये तुम्हें क्या चीज जहन्नम में लेके आई, तो वो पहला जो सबब बताएंगे अपने जहन्नम में आने का, वो कहेंगे हम नमाजियों में नहीं थे, हम नमाजी नहीं थे। दूसरा रीजन जो जहन्नम में आने का बताएंगे, वह लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को नहीं खिलाते थे। जहन्नम में अल्लाह ने डाल दिया, इसी से रिलेटेड है कि जो कयामत को नहीं मानता वो उसकी अलामत यह है कि वो मिस्कीनों का ख्याल रखने की तरगीब उनकी फिक्र में नहीं है। मिस्कीन का जो लफ्ज है वो सुकून से है, और सुकून अरबी जुबान में कहते हैं उस चीज को जिसमें हरकत ना हो, ठीक है। मिस्कीन उसे कहते हैं कि जिसके पास बिल्कुल जिंदगी गुजारने के वसाइल ना रहे, गोया उसकी जिंदगी बेहरकत हो गई है। ये उर्दू वाला सुकून नहीं है जो आराम के माने में आता है, ये बेहरकत हो जाने का, कुछ नहीं कर सकता, घर बैठ गया, रोजगार नहीं है, इसको कहते हैं मिस्कीन। इस तबके की हेल्प जो नहीं करते, अगर आप कुरान से पूछेंगे तो वो कहेगा तू क्यामत को नहीं मानता, तू लाख कहता रहे मानता हूं, क्यामत को नहीं मानता। ए ईमान वालों, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, ठीक है। तुम कह रहे हो ईमान ले आए हो, लेकिन तुम वो नहीं कर रहे जो ईमान तुमसे तकाजा कर रहा है। या फरमाया कि क्या लोगों ने ये समझा है कि जुबान से ये कह देने से कि हम ईमान ले आए उनको छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी, ये आजमाइश है। आजमाइश क्या है, तुम्हें लोगों का मिस्कीनों का ख्याल रखना है। ऐसे ही नहीं था जो हम अपने आयम्मा के बारे में सुनते हैं कि मसलन जब गुस्ल दिया गया तो पुश्त पर कमर पर निशान थे बोरी उठाने के, कि अनाज की बोरियां उठाकर रात के अंधेरे में जाके लोगों को दिया करते थे, इतना इतना उनकी रूटीन में शामिल था कि पक्के निशान बन गए थे। क्यों? इस कुरान की वजह से। नबी को भी इसी कुरान को फॉलो करना है, आयम्मा को भी इसी कुरान को फॉलो करना है, यानी ये कुरान ऐसी चीज है खुदा की तरफ से जिसको सबसे बढ़कर नबी पहले खुद फॉलो करेगा। वह उमिरतु लअन अकूना अव्वल अल मुस्लिमीन, और मुझे अमर दिया गया कि मैं पहला मुस्लिम, यानी पहला सर झुकाने वाला मैं खुद हूं। लिहाजा आप उनकी सीरत में देखेंगे मसाकीन का ख्याल रखना उनकी शख्सियत का एक तारुफ ही है, गरीबों का ख्याल रखना। और अगर मैं और आप गरीबों का ख्याल नहीं रखते, मौला अली का जश्न मनाए, रसूलुल्लाह की नाते पढ़े, कसीदे पढ़े, नो यूज। जब तक कि उस आइन पर अमल नहीं किया जाता कि जिस आइन से तमस्सुक रसूलुल्लाह ने भी करना है, फस्तमसिक बिल्लदी उहिया इलैक, सूरह ज़ुख़रुफ़ में है, ए रसूल जो आपकी तरफ वही किया गया उसको मजबूती से थाम लीजिए। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, आप यकीनन सीधे रास्ते पर है। वह इन्नहु लज़िक्रुल्लक वलिकौमिक वसौफ तुसअलून, और ये कुरान आपके लिए भी नसीहत है और आपकी कौम के लिए भी नसीहत है, और आपसे बहुत जल्द सवाल किया जाएगा इस कुरान के बारे में।

इस कुरान से एक मोमिन को जिंदगी की डायरेक्शन लेनी चाहिए। रसूलुल्लाह की जिंदगी की डायरेक्शन कुरान मुतय्यन करता है, आइम्मा अहले बैत की जिंदगी की डायरेक्शन, उनके सीरत के जो पहलू में नजर आते हैं वो सब कुरान में बेस्ड है, इसको फॉलो किया उन्होंने। हम अगर इसको छोड़ दें, ना देखें कि ये क्या कहता है, और आरजुओं और तमन्नाओं की जिंदगियों में जिंदगियां गुजारें और इस तरह अपने अय्याम गुजारते रहें, ये कतअन भी ठीक रवैया नहीं है। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, ये खुदा बता रहा है आखिरत की तकजीब वाले की अलामत क्या है। इसकी मैं मिसाल यूं दिया करता हूं, आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आपका एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, आप काफी अरसे के बाद उससे मिलने गए और उसने आपको, आपने हल्का सा मसलन ऐसे किया, ठीक है, और उसने आपकी खांसी के स्टाइल से उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। आपने कहा मैं ठीक हूं, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। उसने कहा नहीं, तुम्हें बहुत सख्त, बहुत खतरनाक बीमारी में मुबतला हो। आप उससे जिद करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं चलता फिरता हूं, मैं गेम्स खेलता हूं, मैं सारा कुछ बिल्कुल। तो कहता यकीन नहीं आ रहा, टेस्ट करवाओ। ये दो टेस्ट जो अल्लाह ने बताए आखिरत को ना मानने की बीमारी के, कि तुम टेस्ट करो आखिरत को मानते हो या नहीं। मैं तो मानता हूं या अल्लाह, मैं तो मानता हूं, मैं तो सुबह शाम कहता हूं अल्लाह को, रसूल को, आखिरत कयामत को मानता हूं, मैं तो सूरह फातिहा की तिलावत में कहता हूं मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह कह नहीं, बीमार हो, टेस्ट करवाओ जाके। कुरान की लेबोरेटरी में आपने अपने दिमाग का ब्लड दिया, फिक्र का ब्लड दिया, तो कुरान ने कहा कि तू अगर मिस्कीन की फिक्र में नहीं है तू आखिरत को नहीं मानता। तू अगर मिस्कीन की फिक्र में नहीं है तू आखिरत को नहीं मानता, और अगर तू यतीम के साथ बुरा सलूक करे तू आखिरत को नहीं मानता। ये कुरान की लेबोरेटरी से तेरे दिमाग, तेरी फिक्र के टेस्ट का रिजल्ट है। तू जुबान से कहता, इसलिए मैं कह रहा था आया जुबान से कह देने का लाजम है कि अल्लाह के यहां भी वही लिखा गया। तो अल्लाह तो कह रहा है जो ये करता है वो कयामत को नहीं मानता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मोमिन कौन है? जिसको आखिरत पर यकीन है और आखिरत का यकीन उसको सीधा रखता है, उसको बातकवा रखता है, उसको हदूद क्रॉस नहीं करने देता। ये चंद सिफात बयान की, तकवा वालों की, ईमान बिल गैब, इकामा सलात, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ उस पर ईमान, जो उनसे कबल नाजिल हुआ उस पर ईमान, आखिरत पर यकीन, ये सिफात इब्तदा में बताई जा रही हैं कि अगर ये सिफात तुम्हारे अंदर है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिह, उलाइका इशारा है, यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर। इन सिफात वाले वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब हैं। कौन बता सकता है कि यहां पर उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यहां पर जो हिदायत का लफ्ज आया हुदन यानी हिदायत, ये कौन सा मान है, दूसरा या तीसरा या पहला? जिनमें ये सिफात है ये अपने रब की तरफ से हिदायत पर है, कौन सा माना होगा? रास्ता देख लिया इन्होंने या रास्ते पे चल रहे हैं? जी, रास्ते पर चल रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे, चूंकि जिनमें ये सिफात नहीं है उनको भी दिखाई तो दे जाएगा, जो रसूलुल्लाह बता रहे हैं वो सब सुन रहे हैं। अला हुदन, अब ये आ गए उस रास्ते पर, उस रास्ते पर है। मिन रब्बिहिम, जब तकवा है तो अब तौफीक भी मिलेगी, ईमान बिल गैब, इकामा सलात, ये सब क्या है? ये चल रहे हैं उस रास्ते पर, इन्हें तौफीक मिल गई है, इन्फाक कर रहे हैं, इन्हें तौफीक मिल गई है। तीसरा माना, दूसरा माना क्या था? सिर्फ रास्ता दिखा देना। तवज्जो फरमा रहे, तो ये मैं तकरार करता रहूंगा ताकि इंशाल्लाह ये फर्क आपके जहनों में बैठ जाए। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून,

वरना अगर लघवियात में उलझा हुआ है वो अपनी उसी पहली जंजीर को नहीं तोड़ सका, हरकत कैसे करेगा? इंशाल्लाह समझा पाया हूं आपको मैं। यहां भी कह रहे हैं ये जो आखिरत पर ये गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अलग रास्ते में खर्च कर रहे हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, ये मुफ्लिहून है, यानी ये इस कामयाबी को पा चुके हैं, हरकत में है उस तरफ। क्योंकि जब तक इस दुनिया में है फौज नहीं है। और उसकी दलील के तौर पर मैं ये भी अर्ज कर दूं, आप देखते हैं कि जब कल यौम विलादत है अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, आप क्या देखते हैं कि मौला को जब जर्ब मारी गई है सर में, मौला ने क्या फरमाया? फुज तो, ये फुज तो वही फौज है, फुज तो व रब्बिल काबा, मैं सही हालत में अल्लाह के सामने सुरखुरू दुनिया से जा रहा हूं, ये मेरी कामयाबी है। फुज तो व रब्बिल काबा, वहां पे फाइनल कामयाबी वाला लफ्ज यूज किया। बस दुनिया में अगर हम बुराइयों की जंजीरों को तोड़ दें और नेक अमाल करें, बुराइयों की जंजीरों को तोड़ दिया ठीक है, ये गुनाहों से हम दूर हो गए, और नेक अमाल करना, वो जंजीरें तोड़ी थी, इन नेक अमाल से हम हरकत कर रहे हैं किसकी तरफ? फाइनल कामयाबी की तरफ। या कुरान मजीद ये कह रहा है कि जिनमें ये सिफात है उलाइक अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, वह उलाइक हुमुल मुफ्लिहून, ये जो इनकी उस तरफ हरकत में रुकावटें थी, इनकी जंजीरें थी, उनको ये तोड़ चुके, अब ये सही ट्रैक पर चल रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आयत नंबर 5 हमने तमाम की है, आयत नंबर 6 को हम आइंदा हफ्ते के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी जगह एक और मौला का फरमान आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। चूँकि कल 13 रजब है और बिलमूम जिस तरह जश्न मनाए जाते हैं तो मौला का खुश होना भी मशकूक है उनसे, जिस तरह बाज़ लोग बेहुदा महफिलें बरपा करते हैं और बेहुदा किस्म की हरकत करते हैं, और कोई उसमें बाज़ लोगों को असल फिक्र नहीं होती कि ये जिस ज़ात का की विलादत का जश्न मना रहे हैं उस ज़ात का जो हमसे तकाजा है उसके बरक्स काम कर रहे हैं, हम ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। मैं वो फरमान आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा, नहजुल बलागा के खुतबे का एक हिस्सा है, आयत नंबर 6 और उसके बाद की आयत। ये जो शुरू की चंद आयत है इसमें अल्लाह ने तीन तबके इंसानों के उनका तारुफ करवाया। पहले को हम मुत्तकीन कहें, मोमिनीन कहें, सालहीन कहें, जो भी नाम रख लें, इन आगे कुरान में आ जाता है। दूसरा ग्रुप जो हम अगले हफ्ते जिन्हें काफिर कहा जाता है वो इनके बिल्कुल मद्द मुकाबिल है। ये कौन है कि जब रसूल आया अल्लाह का पैगाम लेकर मोमिनीन मुत्तकीन ने कहा हम तस्लीम करते, कुफार वो है जिन्होंने अलल ऐलान कहा हम नहीं मानते, मुनकिर हो गए इसका। तीसरा तबका जो कुरान जिसे सबसे खतरनाक तबका कहता है काफिरों से भी, वो है मुनाफिकों का, के जो कहते हैं हम अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं लेकिन अल्लाह ने कहा कि ये नहीं रखते, झूठ बोलते। तो ये अगले एक तबका हमने पढ़ लिया, मोमिनीन या मुत्तकीन का, काफिरीन और मुनाफिकीन, ये इंशाल्लाह अगले दरसों में आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। एक हिस्सा मौला के खुतबे का, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये चूंकि ये खुतबा और ये हिस्सा कुरान मजीद ही से मुतालिक, आज के ज़माने में कुरान मजीद के साथ जो दूरी इख्तियार कर ली गई है इसके बारे में गोया के मौला ने पहले से खबर दी हुई, लेकिन किन अल्फाज में दी है ये इंशाल्लाह मौला के जब जश्नों में जाए तो अगर हो सके तो, बेशक अगर चाहिए हो तो उर्दू ट्रांसलेशन मुझसे ले लीजिएगा,

जश्न में जिस न्याज में शिरकत करने जाए वहाँ पर खड़े होकर पढ़ दें कि ये मौला ने आइंदा ज़मानों की के बारे में पेश गोई की थी कि लोग ये करेंगे और हम देखें कि हम करते हैं या नहीं करते। ये खुतबा नंबर 147 है जो मेरे पास मौजूद है। बाज़ औक़ात तरतीब थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो अगर आप ये नंबर नहीं होगा तो इसी के आगे पीछे मौजूद होगा सारा 147 तवज्जो फरमाइए। मौला फरमाते वइन्नहु सयाती अलैकुम मिन बादी ज़मानुन, और बेशक मेरे बाद बहुत जल्द तुम पर एक ज़माना आएगा, एक ऐसा ज़माना कि लैस फीह शैउन अख्फा मिनल हक, कि उस ज़माने में कोई चीज़ हक से बढ़कर मख्फी नहीं होगी, छुपी हुई नहीं होगी। क्या मतलब है कि छुपी जो चीज़ें छुपाई जाती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा छुपी हुई चीज़, जो चीज़ छुप जाएगी और चीज़ों के नीचे, वो हक होगी। यानी ढूंढना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, जहमत करनी पड़ेगी हक तक पहुंचने के लिए। उस जमाने में कोई चीज हक से ज्यादा छुपी हुई नहीं होगी। वला अधहरा मिनल बातिल, और बातिल से ज्यादा जाहिर कोई चीज नहीं होगी। यानी जो तुम्हें नजर आएगा जाहिर में बातिल होगा, और जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा ढूंढना पड़ेगा वो हक होगा। अगला जो जुमला है वो इस ऊपर वाली बात जो मैंने अभी की है इसकी वजाहत कर रहा है कि उसका सबब क्या होगा। वला अक्थर मिनल कदिब अलल्लाह व रसूल, और कोई चीज उस जमाने में अल्लाह और रसूल पर बोले जाने वाले झूठ से ज्यादा नहीं होगी। यानी बकसरत जो तुम्हें दिखाई देगा वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बोले जाने वाला झूठ होगा। बहुत खतरनाक है ये, उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक है जो सिर्फ कानों से दीन लिया जिन्होंने सुना है। मौला फरमा रहे मेरे बाद बहुत जल्द ये जमाना आने वाला है जब हक से ज्यादा छुपी हुई कोई चीज नहीं होगी, बातिल से ज्यादा जाहिर कोई चीज नहीं होगी, और बकसरत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर झूठ बोला जाएगा। इतना कसरत कि इससे ज्यादा कोई चीज नहीं होगी, बाकी चीजें इससे कम होगी। यह क्यों हुआ, क्यों अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ की कसरत हो गई मुआशरे में, क्यों लोगों को पता नहीं चला? अब उसका रीजन बयान कर रहे। वलैस इंद अहल ذلك الزمان سلعة अबवर मिनल किताब इदा तुलिया हक तिलावत, उस जमाने के लोगों के हां उनके जहनों में उनकी सोचों में कोई चीज अल्लाह की किताब से बढ़कर घाटे वाली नहीं होगी। यानी कुरान उनकी नजरों में सबसे ज्यादा घाटे वाली चीज होगा। सिला अरबी जुबान में कहते हैं उस चीज को जिसकी कोई ताजर तिजारत करता है, जैसे मसलन कोई शीशे की तिजारत करे, कोई प्लास्टिक की तिजारत करे, कोई चमड़े की तिजारत करे, जो तिजारत की जिस जिन्स की तिजारत की जाती है उसको सिला कहते हैं। मौला कह रहे कोई जिन्स कुरान से ज्यादा घाटे वाली नहीं होगी। लोगों को सबसे ज्यादा घाटे वाला कुरान लगेगा, लेकिन कब कुरान घाटे वाला लगेगा? इदा तुलिया हक तिलावत, जब कुरान उस तरह पढ़ा जाए जिस तरह पढ़ने का हक बनता है इस कुरान का। जब इस तरह कुरान को सुनेंगे कहेंगे घाटा ही घाटा भाई, ये तो हमारे साथ सेटिंग ही नहीं होती इसकी। वला अनफक मिनहु इदा हुर्रफ अन मवादिअ, और यही कुरान उनके पास इससे ज्यादा मनफियत वाली

कोई चीज नहीं होगी, कहेंगे कुरान से बढ़कर तो चीज ही कोई नहीं है, फायदा ही फायदा। कब ये कहेंगे? जब कुरान को तहरीफ करके उनको बताया जाएगा, कुरान के आयतों को हेरा फेरी करके उनकी मन मर्जियां उनको बताई जाएंगी, ठीक है? तो कहेंगे वाह वाह वाह, अल्लाह की किताब की क्या बात है, अल्लाह की किताब जैसी तो किताब ही कोई नहीं। लेकिन जब कुरान को उस तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह पढ़ने का हक है, यह भी आयमा ने बताया हुआ है कि हक के तिलावत क्या है, जब उस तरह पढ़ा जाएगा कहेंगे भाई ये घाटा ही घाटा, अपने वारे की चीज नहीं है ये। कहते हैं लोग पहली दफा कुरान पढ़ के, क्योंकि मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपीरियंस बहुत होता है, अल्लाह तो बड़ा सख्त है, हमें तो जो अल्लाह पहले बताया हुआ वो तो सख्त भी है ताकतवर भी बहुत है, इस अल्लाह के आगे तो मतलब अगर वो फैसला कर ले तो किसी की नहीं चलेगी। और सबसे खतरनाक जुमला अगर मसलन कभी आपके जहन में भी आ जाए, सबसे खतरनाक जुमला वो क्या है कि कोई बंदा आपके सामने कुरान की आयत का तर्जुमा करे और आप गुस्से में आके कहें आज तक हमने तो नहीं सुना। ये भी मेरे साथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब आप जो बात बता रहे हैं आज तक हमने नहीं सुनी, आज तक हमने नहीं सुनी तो हम फिर पीटे अपने सार में क्यों नहीं सुनी? मैं तो नहीं बता रहा, ये तो सामने लिखा हुआ। मौला फरमा रहे कि उस जमाने में अगर कुरान को सही तरह बताया जाएगा लोग कहेंगे इससे घाटे वाली, इससे ज्यादा घाटे वाली चीज ही कोई नहीं, और अगर उसी कुरान को तहरीफ करके अपनी जगहों से उसकी बातों को हिला जुलाकर कहीं की बात कहीं फिट करके जब यूं बताई जाएगी तो कहेंगे फायदा ही फायदा, इससे ज्यादा फायदे वाली चीज ही कोई नहीं। वला फिल बिलाद शैउन अनकर मिनल मारूफ वला आरफा मिनल मुनकर, और उस जमाने के शहरों में मारूफ से ज्यादा किसी चीज को मुनकर नहीं समझा जाएगा, यानी जो अच्छी दीन ने अच्छी चीजें बताई थी उनसे नफरत करेंगे लोग, और उन शहरों में कोई चीज मुनकर से बढ़कर मारूफ नहीं समझी जाएगी, यानी जो दीन ने जिस खुदा रसूल ने जिनको बुराइयां कहा था वो अच्छाइयां बन जाएगी उन लोगों के लिए, और जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने अच्छाइयां कहा था वो बुराइयां बन जाएंगी। आज बास जगहों पे आप देखें कि अगर एक एक गैदरिंग है, मिसाल के तौर पे एक क्लास है, बैचमेट्स है बहुत सारे, उनमें जो सबसे ज्यादा जिसको तर्स की निगाह से देखते हैं वो कौन होगा? जो नेक है, पांच वक्त का नमाजी है, उल्टी सीधी महफिलों में शिरकत नहीं करता, कहते हैं तो फारिग है, इसकी अक्ल बेचारा है, बकरी है, बकरी अल्लाह मियाँ की गाय है, इस तरह के लफ्ज यूज करते हैं। और जो जितने गुनाहों में फास्ट है फखर से बताते हैं आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने उधर दोस्ती कर ली, आज मैंने काम करके आया हूं, आज उसे कहते हैं यार क्या बात है तेरी, मारूफ मुनकर बन जाएगा, मुनकर मारूफ बन जाएगा, यानी इसके गलत कारनामे सुन के लोग कहेंगे क्या बात है, और उसके नमाज रोजे कहेंगे ये फारिग, उस जो जो वाकई परहेजगार है बातकवा है नहीं आता कहते पागल। मैंने बाज जुमले मैं जानता हूं सुने हुए मैंने कि एक बंदा कि जो एक नंबर का करप्ट है वो अपने किसी जानने वाले को कह रहे कि ये बेचारा तो अगर सोचना भी चाहे तो नहीं सोच सकता, इतना ये बेचारा वो पसमांदा है, ये तसव्वुर नहीं कर सकता मेरी रात किस तरह गुजरती है, इस बेचारे को क्या पता मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूं, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, तुम्हारा जितना मर्जी दिमाग उड़ा लो सोच को परवाज दे लो तुम पहुंच नहीं सकते। ये अपने गुनाहों के बारे में कह रहा होता है, किसको? जो गुनाह नहीं करता उसको। शहरों में मारूफ से बढ़कर मुनकर कोई चीज नहीं होगी, मुनकर से बढ़कर मारूफ कोई नहीं, कोई चीज नहीं होगी। औरत मार्च का तज़किरा मैं नहीं करता, दोपहर को मैं दर्स था उसमें कर आया, ठीक है, शौहर और

बीवी की जिस रिलेशनशिप को इस्लाम पेश करता है उसका जिक्र ही नहीं। और ये जो घर का यूनिट है और ये जो बंधन है जिसको खुदावंद आलम कायम देखना चाहता है और जिस के हुकूक और फराइज के लिए अहदीस के ढेर लगे हुए हैं, हुन्न लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, अंतुम लिबासुल्लहुन कुरान कहता है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। लिबास क्या करता है? ऐब छुपाता है। मौसम जब सख्त हो तो उस मौसमों की शिद्दत से महफूज रखता है। और लिबास इंसान के वजूद के साथ साथ होता है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट। अब अगर कोई शौहर खराबी करता है वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन ये जो लोग करने जा रहे हैं ये उस घर के यूनिट को तोड़ देना चाहते हैं। अगर आप इनकी बातों की जड़ों में गौर करें, आपको इन जो इनके स्लोगन्स हैं उनके पीछे कोई दीन की बुनियाद दिखाई नहीं देगी। कि ये जो नारा लिया गया है इसमें दीनी बुनियाद है। इनकी जुबानों पर खासतौर पर जो जो लीडर्स बने हुए हैं, परचमदार बने हुए इन कामों के, खुदा बंदे आलम मुसलमान माओं और बहनों को इनके शर से महफूज रखे। एक चीज मैं अर्ज कर दूं, टाइम तकरीबन तमाम है, याद रखिए, खास तौर पे मर्द हजरात से कह रहा हूं कि बहुत सारी औरतें के जो मर्दों के हाथों परेशान होती हैं, उनका हक मार लिया गया हो, बाप बेटी को हक ना दे, भाई बहन को हक ना दे, खा जाए उसका जायदाद में हिस्सा खा जाए, बाप उस जगह पर जहां बेटी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है और वो हुदूद शरीयत में रहते हुए कुछ करना चाहती है, अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहती है, और ये जबरदस्ती उसको रोकता है, और खुदा ना खास्ता वो बच्ची इन खबीसों के चुंगल में जाके फंस जाती है कि जो औरत को सरे बाजार लाकर एक तमाशा बना देना चाहते हैं कि वो अपना हुस्न बेचे, वो नामहरमों की मसलन निगाहों के लिए लज्जत का सबब बने, ऐसा बना देना चाहते हैं जैसे कि उनका अपना मुआशरा है। वो लोग के जो अपनी खवातीन के हुकूक को सही तरह अदा नहीं करते, अगर शौहर है, अगर भाई है, अगर बाप है, कोई भी रिश्ता अगर नहीं उनको सही तरह जिस तरह दीन ने बताया, ये सबब बनता है कि खुदा ना खास्ता वो बच्ची, वो माँ, वो बहन, वो बेटी, वो बीवी इन खबीसों के नरगे में जाके फंस जाए। इनकी बातें उसको ज्यादा लगे कि ये मेरे हकूक की हिफाजत कर रहे हैं। उसको अल्लाह और उसका रसूल और अहले बैत कम लगे अपने हकूक का दिफा करने वाले, और ये जो सड़कों पे आपको नजर आ रहा है ये हकूक की हिफाजत करने वाले ज्यादा नजर आए। रोज कयामत अगर कोई ऐसी हमारी बच्ची, माँ या बहन अगर इस वजह से, हमारी वजह से इस गुमराही की तरफ जाती है, तो क्यामत के दिन वो खुद तो जवाबदेह है, लेकिन जिन्होंने जुल्म किए, जिन्होंने हक मारे अपनी बहनों के या माओ के, वो भी उसी तरह पकड़े जाएंगे कि तुमने क्यों धकेला। अगर तुम धक्का ना देते अपनी बेदीनी की वजह से, और अल्लाह ने जो इसको हुकूक दिए थे उन हुकूक को गस्प करने की वजह से, अपनी बेजा अफकार, जो गलत अफकार थी उनकी वजह से, अगर तुम अपनी हरकत से इसको धक्का ना देते तो शायद आज ये उस जगह पे ना खड़ी होती जहां पे ये खड़ी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस जमाने में शहरों में मारूफ से बढ़कर कोई चीज मुनकर नहीं होगी, यानी मारूफ मुनकर बन जाएगा, और मुनकरात से बढ़कर कोई चीज मारूफ नहीं होगी, मुनकरात मारूफ बन जाएंगे। अरबी छोड़ो, कोशिश करो सिर्फ उर्दू का तर्जमा आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जाके आप इंशाल्लाह देखिएगा ये क्यों हुआ। इसलिए कि उस जमाने में जिनको किताब दी गई थी अल्लाह की, वो उस किताब को गैर अहम समझ के फेंक चुके होंगे, अहम नहीं होगी किताब उनके लिए, और उसके हाफिज गोया उसको भुला चुके हैं। कुरान कोई नहीं फेंकता,

एफ आई आर हो जाती है किसी के सामने कुरान फेंको, लेकिन उसकी तालीबात फेंक दी गई हो। इसी तरह हाफिज तो होता ही वही है जिसको कुरान याद हो, लेकिन तालीबात कुरान गोया भूल गए। इसी तरह अब ये भी सुन लीजिए, किताब, किताब खुदा और उस किताब वाले लोग उस जमाने में तरीदान धुतकारे हुए मनफियान महफिलों से निकाले हुए होंगे। क्यों? उनकी बातें नहीं अच्छी लगती होगी लोगों को, लिहाजा कहेंगे निकल जा। मौला फरमा रहे किताब खुदा और उससे अटैच लोग तरीदान, तर्द करना अरबी में कहते हैं, धुतकार देना, निकल जाए यहां से। मनफियान उसी की ताकीद है, धुतकारे हुए और निकाले हुए, कोई पनाह देने वाला उनको पनाह नहीं देगा। और किताब और किताब वाले उस जमाने में लोगों में होंगे लेकिन लोगों में नहीं होंगे, लोगों के साथ होंगे लेकिन लोगों के साथ नहीं होंगे, इसलिए कि बेशक हिदायत कभी गुमराही के साथ इकट्ठी नहीं होती अगरचे एक ही जगह मौजूद हो। उसकी मिसाल कि मक्का है, ये रसूलुल्लाह खड़े, ये साथ अबू जाल खड़ा है, लेकिन नजर देखने वाले को आ रहे इकट्ठे खड़े हुए, लेकिन रसूलुल्लाह कहां और अबू जाल कहां पर। या बकौल इकबाल के, शाही का जहां और है, करगस का जहां और, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, शाही का जहां और है, करगस का जहां और, एक ही हवा में उड़ते हैं। वो शिकार करके खाता है, ये वेट करता है कोई मुर्दार हो तो मैं, कोई दूसरा मारे या कोई मुर्दार हो तो मैं उसको खाऊंगा। होंगे लोगों के दरमियान होंगे, लेकिन गोया लोगों के दरमियान नहीं है, किसी और जगह की मखलूक है। उस जमाने में कौम इस बात पर इकट्ठी हो जाएगी। तवज्जो फरमाए, क्या फरमा रहे बोला? उस जमाने में कौम इस बात पर इकट्ठी हो जाएगी कि हमने इकट्ठे नहीं होना, इस बात पर इत्तहाद कर लेंगे, एका कर लेंगे कि हमने एका नहीं करना, पार्टियां बनानी है, ग्रुप बनाने हैं, फिरके बनाने, और इस बात पर कि जमात बनाई जाए, इत्तहाद किया जाए, इस बात का जब जिक्र आएगा टुकड़ों में बट जाएंगे। यानी जब टुकड़ों में बटने की बात होगी इत्तहाद कर लेंगे, सब कहेंगे हाँ ठीक है, अमल बताएगा उनका, और जब यह बात की जाएगी इकट्ठे हो जाओ, सारे अपने अपने राग अलापना शुरू कर देंगे, अपनी अपनी पार्टियां बनाएंगे, इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं होंगे। बातें कैसी होंगी, कैसे दलीलें देंगे, अल्लाह की किताब को कैसे हेरा फेरी करेंगे? मौला फरमा रहे हैं, अल्फाज सुनिए, कअन्नहुम अइम्मतुल किताब वलैसल किताब इमामहुम, गोया के ये खुद किताब खुदा के इमाम है, किताब खुदा इनकी इमाम नहीं है। क्या मतलब? देखिए अल्लाह के नबी की हदीस है, फरमाया कि शिया सुनी दोनों में मौजूद है कि जिसने कुरान को मन जअलहू अमामा, जिसने कुरान को अपने सामने अपने आगे करार दिया, साकहू इलल जन्नह, माजरत कादहू इलल जन्नह, कुरान उसको खींच कर, ये कादा वो लफ्ज है जिससे कायद बनता है, कायद, कायद किसे कहते हैं अरबी जुबान में, जो जानवर को लगाम पकड़ के सामने से खींचता है उसे कायद कहा जाता है, इसीलिए लीडर को कायद कहते हैं। इसका असली माना याद रखें, कायद किसे कहते हैं एक्चुअली अरबी जुबान में, जब किसी जानवर को सामने से पकड़ के खींचा जाए और उसको चलाया जाए तो ये सामने से खींचने वाला कायद होता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने कुरान को अपने सामने रखा, गोया अपने लफ्जों में कह रहा हूं, अपनी लगाम जिसने कुरान के हाथ में दे दी, कादहू इलल जन्नह, ये लगाम पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। वमन जअलहू खल्फा, और जिसने कुरान को अपनी पीछे रखा, पीछे कौन रखता है, मैं आगे चलूं पीछे तू आ, जो तुम्हारी आयत है वो नहीं, जो मैं बता रहा हूं मुराद है वो है, ये कहता है कुरान को मेरे पीछे चल, ये कुरान से ये नहीं कहता तो आगे चल मैं पीछे चलूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वमन जअलहू खल्फा, जिसने इसे अपने पीछे रखा, साकहू इलन्नार, साएक किसे

0: कहते हैं जो पीछे से हाँकता है जानवरों को, उसे सायक कहते हैं। अभी अरबी जुबान में ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसको भी सायक कहते हैं, इसी निस्बत से कि जो वो ड्राइव कर रहे, जो हाँके उसे सायक कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कुरान को पीछे रखेगा फिर कुरान भी एक काम करेगा, हाँक के उसको जहन्नम में, जैसे हाँक के जानवर ना भी जाना चाह रहा हो जहां पे जाना होता है वहां पे उसको डाल देता है वो हाँकने वाला, कुरान इसको हाँक कर आग में ले जाएगा। साकहु इलन नार, बस कुरान कायद भी है और साइक भी है। कायद उसके लिए जो कुरान से कहे तू आगे चल मेरी लगाम तेरे हाथ में, और कुरान साइक है हाँकने वाला जहन्नम की तरफ उसके लिए जो क्या कहे कि जो ये लिखा है मैं बताता हूं मुराद क्या होती है, ये ना मुराद है, तवज्जो फरमा रहे हैं। और ये कोई इसको समझ नहीं सकता, ये मेरे बोलने खपने से भी कोई नहीं, इसका तरीका आपका खुद कुरान मजीद को पढ़ना है। अगर इसको हल करना चाहते हैं इस मसले को अपने लिए, आपको तब पता चलेगा ये जो धुआंधार तकरीर हो रही है इसमें कितनी दो नंबरी हो रही है, इसमें कितने पैंतरे बदले जा रहे हैं, कहां की आयत को कहां फिट किया जा रहा है, वक्त नहीं है वरना बहुत सारी मिसालें इसकी मेरे पास है। ये तब पता चलेगा जब आप खुद, जब आप अपनी लगामें दूसरों के हाथों से छुड़ाकर कुरान मजीद के हाथ में दे देंगे, तब कुरान मजीद अपना काम करेगा। गोया ये किताब खुदा के इमाम बन गए, न कि किताब खुदा इनकी इमाम है, ऐसे हरकतें करेंगे। जो आयत पढ़ोगे अपनी घड़ी हुई कोई तावील लाके फिट करके उसकी हवा निकाल देगा, हर चीज के लिए तावील इनके पास मौजूद होगी, गोया ये इमाम है। अल्लाह ने ऐसी बातें की थी कि जो एक बात भी नाउज़ बिल्ला सीधी नहीं की, इनको वजाहत करनी पड़ती है तब अल्लाह की बात पता चलती, ये अल्लाह से ज्यादा सियाड़े बन जाएंगे। गोया ये इमाम है, किताब के किताब इनकी इमाम नहीं है। और आखिरी जुमले ये है कि उस जमाने के लोगों के पास कुरान का सिवाय नाम के कुछ नहीं बचेगा, और सिवाय कुरान के खत के किसी चीज को नहीं पहचानते होंगे कि इसके अंदर पैगाम क्या है, इन्हें कुछ पता नहीं होगा। नाम पता होगा कुरान का कि कुरान है ये, और इसकी राइटिंग क्योंकि वो बड़े बड़े आर्टिस्ट दीवारों पे भी लगा देते हैं और कभी कभी माह रमजान में भी खोल के, आगे माह रमजान आ रहा है इतने कुरान खत्म किए इतने ये कर दिया, मानूस है कि ये, लेकिन इससे आगे की कोई बात कुरान की इनके पास बाकी नहीं बचेगी, उससे हाथ धो चुके होंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले पर। ये खुतबा नंबर 147 है, इंशाल्लाह अगर आप से गुजारिश करूंगा कि हतमन जाकर इसको देखिएगा, अगले दर्स में खुदावंद आलम ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। परवरदिगार आलम कुरान और अहले बैत अथार के सदक़े हम सबको कुरान और अहले बैत की तालीमात पढ़ने की, समझने की, अमल करने की और अपनी औलादों की इन्हीं के साए में तरबियत करने की, फ़िक्र करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात।
1: I humbly address our master, Imam Mahdi. With faith in the Almighty God, taking recourse in the Immaculate Imams, peace be upon them, and following the path of our martyr leader, we are standing steadfast under your flag against the front of unbelief and arrogance. On this path, we have offered valuable martyrs from various walks of life for the sake of the country's dignity and independence, and for the exaltation of Islam and the Islamic Revolution. We've also suffered other losses. With our entire being, we now place our trust in your special supplications for a decisive triumph over the enemy. We pray that both our adversaries and we will witness the miraculous effect of those prayers very soon, God willing.